राम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को साथ सुमावे रे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाए ले प्राचत जाहे नाए ले प्राचत जाहे नानक तो मखंत्र पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जाद गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मह बेत अथर बन हुआ नाव कदाई अलोह भया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुणह तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरियायत, देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

0: मन का सूतक लोभ है जे वासुतक कूड़ अखी सूतक वेखना पार त्रै पार धन रूप कन्नी सुत कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बते जंपुर जाए महला पहला
1: सबो सुतक परम है दूजे लगे जाए जम्मन मरना हुक्म है।

रात दिवस रात दोए दाए दाया खेले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ पचे धर्म हदूर करमी आपो आप।

0: गए मशक्कत कान, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी साहब।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत किह अचल मूरत अन पाओ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहि साहण गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत भन तृण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत जब लो नहीं पागल लारि उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो काल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछताया तत विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जो न घर बनाया सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है जब लग जो बन सास है तब लग एह तन देह बिन गुण काम न आवई टह टेरी तन खेह मेरे मन लैलाह कर जाहे गुरमुख नाम सलाही हौ मैं निवरी पाहे सुन सुन घंडन घंडी लिख पढ़ बुझ पार तृष्णा अहन से अगली हौ मैं रोग विकार ओह वे परवाह अतुलवा गुरमत की मत सार लख सियाण पजे करी लख स्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधन त्रापिया बिन नावै दुख संताप हर जप जी अरे छुटिया गुरमुख चीन आप तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल त्रिभवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से यह आए सफल तिना के कमान मेरे राम हर जन कहौ बल जाई
केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड मुख लाई लिखे कतहे ना छूटिए खिन खिन फूलन हार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफ तख समदी नूर अर सह खुर सह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास

सब रखे कुटुंब नाल कारज आप सवारियां सो प्रभ सदा संभाल प्रभ मात पिता कंठ लाए लोहड़े बालक पाल

देह नाम संतोखिया उत्तर मन की भुख गौरवण तिण हरिया कीत्या नानक क्या मनुख पौड़ी सो ऐसा दातार मनहो ना विसर कड़ी न मोहत चसा तिस बिन ना सर अंतर बाहर संग क्या को लुक कर जिस पत रख आप सो पव जल तर भगत ज्ञानी तपा जिस

0: पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब के तेरे वास तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वधाए तुद घर, माण महता तेज अपना आप जार, सर्व कला परपूर दिसै जत कता, नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया, खेले सगले जगत, चंगियां या बुरियां या, वाचे

विनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव, मोकौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जानते उपाए। ताका रिजक आगै कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोय न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करिया। उडे उडे आवै सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिद्धान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत ना। सब निदान दास अष्ट सिद्धान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइया, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा आगम अपारा। सब ते आवह सब ते आवह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर ते आवह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दा ते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है पातशाही दसवी कबो वाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख्यो सबै करतारा मोर अच्छा निज कर द करिया सब वैरन का आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्यो हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियो रक्षा राख ले हो मुहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेवगुन सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान काट काट के पाट पाट की जान जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहूँ तुम मैं मिलत देह तर सबहूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आपे अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव ना पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आपे अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संस

तारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उतपुज खान बहुर राच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदे जुगादे स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जित उठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छ्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आइया, शब्दो ता गावहु हरि के राम मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ।

दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे

प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालस जी के बोल बल बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, परसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा रखां आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया, श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार

नानक घर के गोले, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपना, तान मान होए निहाल, जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूरे अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सचे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदान, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु, सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, कार बार मां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंदना हार, बंदना गुण गावहो गोपाल राय, बंदना हार, बंदना

कट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापे सोग अगन तिस जन न व्यापे सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जप हो हर रंगे पर धन दोख किश पाप न फेड़े जम जंधार न आवे नेड़े

करे प्रभ शरणाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाशन है, भगत बछलिया नाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है। बिलावल महला पंजवा। ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिव लाई रहाउ। राख लिए तिन रखन हार, सब व्याद मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एको अंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखिया करते का होय विचारो। तित कर गाव हो सोहेला, शिव रिहो सिर जनहारो। तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहेला, हो बारी जित सोहेला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन, देखे गा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन आसीसड़िया, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहोचा, सद्दड़े नित पवन। सद्दन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ। बेसोए जसया घड़िया पहरा, थिती बारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहसताव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मह चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन बड़ा हे, कर दंडौत पुन बड़ा हे रहाओ। साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा हे।
ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावह, जम काल सह है सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडाही। अवनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहुसोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा। आगे वसन सुहेला, औद घटे दिन सुरै नारे। मन गुरमिल काज सवारे, रहाओ एहो संसार बेकार संसेम है। तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पिया वै एहो रस। अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो। हर गुरते मन है बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे। बहर न होए गो फेरा, आंतर जामी पुरख विदाते। शरदा मन की पूर, नानक दास एह सुख मांग। मोको कर संतन की तूर, अंतर जामी पुरख बेदाते। शरदा मन की पूर, नानक दास एह सुख मांग। मोको कर

तू ठाकुर पूज भगवाना, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर दीजै, हमें अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत साद बिखै बिखखा,

0: दुख दारू सुख रोग भया जस ताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाऊं करी न हो। बलहारी कुदत वस्या तिरंत न जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता ककला पर पूर रहा। तू सच्चा साहिब से सवालियो जिनकी तीसो बार पया। कहो नानक करते क्या बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं।

0: ब्रह्मा विष्णु श्रेत अगंत तिनको मोह पया मन मत का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबू को तदका सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका।
1: सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत जितारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस।

0: का बड़ा तमाशा, गुरमुख संगत सब बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तुल जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, माने ब्रह्माद रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाये परमारथ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना।
2: अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, सेव बिरंच धर ध्यान निधै जिस बेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गड़न समाथ तरन तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार

काहे बेख खाई ताज परम करम बेदन खेद राम नाम लेही गोर प्रसाद जान कबीर राम कार स्नेही ताज परम करम बेदन खेद राम नाम लेही गोर प्रसाद जान कबीर राम कार स्नेही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की।